का हर जर्रा इस सुर को होकर ये दे रहा है सदा। और हुसैन इब्ने अली ने गम के अंबारों से